0: வணக்கம் நேர்களே, ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி நிலையம். சில நொடிகள் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवाद हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी

0: में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृतियों और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आरना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Today is the second and final day of the BRICS summit. The two-day summit began yesterday at Bharat Mandapam in New Delhi. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration 2026 on the first day of the summit itself. The BRICS nations reiterated their commitment to the peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy. The leaders also expressed their concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They also strongly condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms and reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. India is organizing the summit for the fourth time. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit yesterday, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi held a

0: சில நொடியில் தொடர்வது சமஸ்கிருதத்தில் செய்தி அறிக்கை.
1: ஆயே சுனத்தே சமாச்சார். சன்ஸ்கிருத் மே ஹோங்கே பஹலே, ஃபிர் ஹிந்தி ஔர் அங்கிரேஜி மே, உஸ்கே பாத் புனா ஆப்ஸே முலாகாத் ஹோகி.
2: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம். பிரவாசகஹ புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः. ब्रिक्स देशाः ह्यः नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे नवदेहली घोषणाम् अङ्गीकृतवन्तः. घोषणापत्रे दृढतर बहुपक्षवादस्य, गहनतर सहकारस्य च प्रतिबद्धतायाः आह्वानम् अस्ति. सुदृढ आर्थिकविकासात्मक सहकारस्य उपरि बलं प्रदत्तमस्ति, तथा च वैश्विक विषयेषु निर्णय प्रक्रियायां विकासशील देशानां महत्तर प्रभावस्य कृते अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः समर्थनमस्ति. नवदिल्ली घोषणायाः स्वीकरणानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य समापन भाषणे उक्तवान् यत् एतत् सदस्य राष्ट्राणां सहभागित्व संकल्पाय स्पष्ट दिशां प्रददाति. सः अग्रे अवदत् यत् अधुना एतेषां संकल्पानां मूर्त परिणामेषु परिवर्तनं तेषां संयुक्त दायित्वमस्ति.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता. रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है. आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है. अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले.
2: अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति. नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः द्विदिवसीयं शिखरसम्मेलनं प्रारब्धम्. ब्रिक्सदेशाः शिखरसम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे एव 26,000,000 नवदिल्लीघोषणाः अङ्गीकृतवन्तः. ब्रिक्सदेशाः संवादस्य, परामर्शस्य, कूटनीतेः च माध्यमेन अन्ताराष्ट्रियविवादानां शान्तियुतसमाधानाय स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तः. पश्चिमेशियादेशे निरन्तरं वर्धमानस्य समाह्वानस्य विषये अपि नेतारः चिन्तां प्रकटितवन्तः. ते च गतवर्षस्य अप्रैलमासस्य 22 दिनाङ्के जम्मूकश्मीरप्रदेशे आतङ्क्याक्रमणस्य दृढतया निन्दाम् अकुर्वन्, तथा च आतङ्कवादस्य विरुद्धं युद्धस्य स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृतवन्तः. इतोप्यवधेयं यत् भारतं चतुर्थवारं शिखरसम्मेलनम् आयोजयति. गतसायंकाले नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा आयोजिते ब्रिक्स नेतॄणां शिखरसम्मेलने गाला डिनर इत्यस्मिन् नवरसः

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
1: नमस्कार फरहत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क।
0: जी बिल्कुल, आज के इस अंक में बहुत कुछ होगा, खास देश और दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी और मौसम का हाल जानेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे रेनू, और अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी हम याद करेंगे।
1: यस एंड दिस इज लेट मी टेल आवर लिसनर्स वंस अगेन दैट दिस इज द 13th ऑफ सितंबर एंड वी हैव सो मच इन स्टोर, सो प्लीज पे अटेंशन, बी इन योर बेड्स विद योर कप ऑफ टीज बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग एंड वी आर बिगनिंग विद our daily news magazine program aaj savere।
0: बिल्कुल, और अपनी श्रोताओं को हम बता दें कि आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। भारत चौथी बार इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेंद्र।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: And Farhat, we have a report by Jigyasa Pandey on Prime Minister Narendra Modi's bilateral meetings with the leaders of the BRICS countries, which was held yesterday. So let's listen in.
3: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their long-term interests of the two peoples. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense

0: past and present. Moving on to Bengaluru Metro, the former deputy chief of the air staff, Air Marshal Avadhesh Kumar Bharti, has asked industry partners to cater to the changing global battlefield dynamics and be part of capability enhancement roadmap of Indian Armed Forces. He was addressing the valedictory of the 2 days national seminar Shaurya 2026. The seminar that concluded in IIM Bengaluru was on the Indian military industry interaction. He called upon the defense production ecosystem, investors, academia, MSMEs, and the startups to deliberate on India's evolving defense landscape. The 2 day session dwelt upon thematic panels of building the industrial base in the areas of manufacturing, maintenance, repair, and overhaul, MRO and exports. The seminar concluded with the resolve to build stronger bridges between the armed forces, industry, investors and veterans for a self-reliant India. And I have news from Hyderabad Metro. Governor of Telangana Shiv Pratap Shukla on Saturday said that Prime Minister Narendra Modi's leadership was guided by a commitment to serving the nation rather than seeking office or power. Addressing the launch of young lawyer Amber Agarwal's book Governance of the Self, 75 Lessons in Leadership, Discipline and Service at Novotel High-Tech City, the governor said self-discipline, restraint, a sense of duty and selfless service were essential for effective leadership and good governance. The governor, along with other dignitaries, formally released the book and congratulated Mr. Agarwal on his book. Referring to the Prime Minister's leadership, the governor said Mr. Modi had consistently placed national interest above personal considerations. And moving on to you, Farhat, what do we have from the rest of the three metros, that is Delhi, Mumbai and Kolkata?
1: Ji Renu, sabse pehle shuruaat kar lete hain Rajdhani Delhi se judi khabar se. Iran ke rashtrapati Masood Pezeshkian ki beti Zehra Pezeshkian ne pradhanmantri sangrahalay aur BRICS bazaar ka daura kiya. Is dauran unhone Bharat ki loktantrik virasat aur sanskritik dharohar ko kareeb se dekha. Is sangrahalay mein Bharat ke pradhanmantri aur desh par unke prabhav ki jhalak milti hai. Saath hi Zehra Pezeshkian ne mahila aur bal vikas rajya mantri Annapurna Devi ke saath hastakala संग्रहालय में आयोजित ब्रिक्स बाजार का भी भ्रमण किया. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में शेख सराय में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बनाने को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को परियोजना का निर्माण कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य दिया है. और अब मुंबई चलते हैं, बात करते हैं गणेश आरोग्य चाकी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा परिकल्पित श्री गणेश आरोग्य अभियान 2026 गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में 14 से 25 सितंबर तक पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाएगा. इस पहल का आयोजन मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत मुख्यमंत्री राहत कोष प्रकोष्ठ और धर्मार्थ अस्पताल सहायता प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी. वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम ने इस वर्ष के श्री गणेश उत्सव के लिए अपने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोदक महोत्सव 2026 का आयोजन किया है. मुंबईवासी इन महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए ताजे भाप में पकाए गए और तले हुए मोदक ऑर्डर कर सकेंगे. बीएमसी की सीमा में रहने वाले नागरिक shopshop.com पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों के लिए मोदक की होम डिलीवरी 14 सितंबर से शुरू होगी और ये सेवा केवल मुंबई में ही उपलब्ध होगी. और अब बढ़ते हैं आगे, कोलकाता का रुख करते हैं. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य को मछली और मांस पर बहस करने के बजाय रोजगार और निवेश पर ध्यान देना चाहिए. कल कोलकाता के केस्टुपुर में गणेश पूजा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग और निवेश की कमी के कारण प्रतिभाशाली छात्र राज्य छोड़कर अन्य राज्यों और देशों में जा रहे हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि विभिन्न मौजूदा मुद्दों पर प्रकाश उन्होंने डाला और इस मामले में जन जागरूकता और सार्थक बहस की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि निवेश लाने और रोजगार सृजित करने पर गंभीरता से विचार किए बिना केवल गणेश पूजा का आयोजन करना पर्याप्त नहीं है.
0: एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज फरहत व्हिच आई हैव फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रो. सी कैंप नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन फाइनलिस्ट वर अनाउंस्ड इन बेंगलुरु. Over 3,200 competitors from across 34 states and union territories had taken part in the competition. As part of the exercise, 15 startups and

0: Four student teams were declared the winners of this 9th edition of the competition. The winning startups received over 35 crore rupees cash prizes, while the student team secured 4 lakh rupees in cash prizes. The winners declared will receive mentorship and hand-holding support from the industry leaders. They will work on solutions in the areas of next-gen cancer pathology, screening kidney injury through quantum sensing, biopolymer-based in-situ bone regeneration, affordable insulin patch pumps, frugal surgery resources and training platforms for low-resource surgery settings, compact grey water treatment appliances for home use, satellite imagery embedded smart spraying of agri inputs and farms, and bioformulations to enhance soil health. So this is all that is happening in Bengaluru Metro.
1: और श्रोताओ, अब आइए मौसम का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज बारिश की संभावना है यहाँ पर और दोपहर तक मौसम बदल सकता है। न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: एंड चेन्नई विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 32 degrees Celsius. And Hyderabad will also have likely partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, where the maximum may reach up to 31 degrees Celsius.
1: और रेनू इतिहास के पन्नों की अगर बात की जाए तो 13 सितंबर की तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं, राजनीतिक बदलावों और चर्चित शख्सियतों के जन्म और निधन के लिए दर्ज है। इसी दिन भारत में हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की कार्रवाई से लेकर दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों तक कई अहम घटनाएं हुई।
0: जी बिल्कुल। सो बिगनिंग विद द ईयर 1788, ऑन 13th ऑफ सितंबर न्यूयॉर्क सिटी बिकेम द टेम्पररी यूएस कैपिटल। द कांग्रेस ऑफ द कन्फेडरेशन डेजिग्नेटेड न्यूयॉर्क सिटी as the national capital and authorized the first national election. In 1814, on this day, bombardment of Fort McHenry was during the War of 1812. The British bombardment inspired Francis Scott Key to write what became the Star-Spangled Banner. In 1948, Margaret Chase Smith made history. She was elected to the U.S. Senate, becoming the first woman to serve in both the U.S. House and Senate.
1: बिल्कुल। और सन 2000 की बात की जाए तो भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहले फिनिश शतरंज विश्व कप जीतने का नाम जो है वो दर्ज करवाया। और 2006 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिगुटीय संगठन इप्सा का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में शुरू हुआ।
0: एंड यू वर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद इंटीग्रेट into India, Farhad, that happened in the year 1948 on this day when the Indian forces began Operation Polo, leading to the incorporation of the princely state of Hyderabad into the Indian Union. In 1971, on this day, Attica prison uprising ended. A police and National Guard assault ended the four-day uprising at Attica Correctional Facility in New York, where 32 inmates and 11 hostages were killed.
1: और सन 2007 की अगर बात की जाए तो नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से करीब 3 गुना बड़े ग्रह की खोज की। वहीं 2008 में दिल्ली में महज 30 मिनट के भीतर 3 स्थानों पर 5 बम विस्फोट हुए। इन धमाकों में 19 लोगों की मौत हुई थी और 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।
0: And talking about Super Mario Brothers, our listeners are surely aware of what I'm going to talk about. This was released in Japan in the year 1985. The Nintendo Entertainment System game launched the hugely influential Super Mario platform game series on the 13th of September. In 1993, Oslo Accord signed. Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin

0: वॉच, प्लीज डू सो।
1: और अब हम याद कर रहे हैं भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे को, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाना उनका सपना था। उनका मानना था कि इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। किराना घराने की सशक्त हस्ताक्षर स्वर योगिनी प्रभा अत्रे को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने 11 पुस्तकें एक चरण में ही जारी की, जिसका उन्हें विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त है।

0: और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान की। इनका वास्तविक नाम था लालजी पांडे और 1966 में आई फिल्म बहारे फिर आएंगी का गीत हसीन रुख पर सभी लोगों को आज भी दिल छू लेता है। और मोहम्मद रफी की आवाज में क्यों ना रेनू इस गीत को सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

और श्रोताओं वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी का भी जन्मदिन है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म परदेश से, तो इस फिल्म से भी ये गीत सुन लेते हैं।

0: बिल्कुल, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया.
1: जी बिल्कुल. एंड डियर लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब संडे. नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया. मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी. एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता. और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से. नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई. घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है.
3: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए. घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया. ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की. ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है.
4: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है. इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है. साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है. किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है.
2: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा.
4: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए.
2: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली

0: घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
1: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
2: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया।

0: कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन

0: और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में

0: www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026, issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
1: திரைக்கானத்தில் அடுத்து பாரதிய சேனா. நமஸ்கார், மேன் ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

பழனிசாமா பழனிசாமி பா பழனிசாமி.

0: मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। योजना के अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जलसीमा के भीतर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलिना रायबाकीना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रायबाकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्पुस्की ने जर्मनी के केविन क्रार्वेटेस और टिम पुइट्स को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा। पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. BRICS leaders have condemned the April 2020

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान

0: आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इसे आगामी क्षेत्रीय बैठक में अन्य खाड़ी देशों के समक्ष रखने की योजना बना रहे हैं। इसके अंतर्गत खाड़ी में प्रवेश मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा के अंदर होगा। इसके निकास मार्ग का हिस्सा भी ईरानी नियंत्रण में होगा। इसके लागू हो जाने से जलमार्ग का दक्षिणी मार्ग बंद हो जाएगा। ये अमरीका की मांगों का सीधा विरोध है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा रहा है। ईरान ने जलमार्ग के खुलने से पहले अमरीका के सामने शर्तें रखी हैं। उसने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये मार्ग बंद रहेगा। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियानों के कमांडर को पद से हटा दिया है। साथ ही ईरान की सीमा से लगी शलाम चेह चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था

0: कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़िमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा दल ने बताया कि अब तक बरामद शवों में से 104 की पहचान कर ली गई है और उन्हें परिवारों को सौंप दिया गया है। अभी लगभग 5130 लोग लापता हैं। सुरक्षा बल खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 339 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई ने एआई उद्योग के तेजी से हो रहे विकास को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों को तकनीक के साथ तालमेल में समय लगेगा। श्री अमोदेई ने चेतावनी दी कि मजबूत सुरक्षा उपायों के बिना एआई 6 से 12 महीनों के भीतर एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। ये संभावित रूप से इंटरनेट पर कब्जा कर अन्य जोखिम भी पैदा कर सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडब्लू मध्य के लिए नए जलमार्ग पर सहमत हुए। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों के बाद इराक ने सैन्य कमांडर बर्खास्त किया। एलिना रायबकीना ने आरेना साबालेंको को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप क्रिकेट फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. Iran and Oman agree on new entry and exit shipping routes for Strait of Hormuz. Iraqi military commander dismissed after drone attacks against Saudi Arabia. Alina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup.

0: அழைக்கும் குரல் மலேசியா வாசுதேவன்.
1: பட்டு வண்ண சேலைக்காரி.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री इस समय भागीदार देशों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
2: क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन

0: केवल सरकारों तक सीमित न रहे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने हैं। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आज सम्मेलन के अंतिम दिन एजेंडे में क्या कुछ खास है?
2: देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन आज ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदार देशों के नेताओं का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया और बाद में ग्रुप फोटो के लिए भी सभी एकत्रित हुए। इस सत्र के बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और इराक के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों से शुरू हुआ यह समूह कुल मिलाकर 21 देशों का हो गया है, जिसमें सदस्य और साझेदार देश शामिल हैं। और भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में जो है दोगुना ज्यादा बढ़ा है। ब्रिक्स जो है भारत के लिए
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। कल सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today welcomed leaders of BRICS partner countries on the second and last day of 18th BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi. They include Prime Minister of Malaysia Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Foreign Minister of Saudi Arabia Faisal bin Farhan and UN Secretary General Antonio Guterres. After posing for family photos, the leaders are participating in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. And now, we go live to Prime Minister Narendra Modi's welcome remarks at Bharat Mandapam. The 10 partner countries of BRICS are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda,

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
2: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
2: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और

0: एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister says trust of Global South nations grown in BRICS, warns against weaponization of technology and critical minerals. Prime Minister Modi holds bilateral meetings with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi on the sidelines of the BRICS summit. Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026. Gujarat's Ukai region records over 11 inches of rain, red alert issued across several southern districts of the state. In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after a ferry carrying more than 240 people overturned today. And in women's cricket, India to face defending champions Sri Lanka in the finals of the T20 Asia Cup in Dubai today. Prime Minister Narendra Modi today noted that the trust of the Global South nations in BRICS has grown because the voices are heard and the experiences are respected. He opined that the strength of BRICS lies in diversity and cooperation. Addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping.
2: आज के interconnected world में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है।
1: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
2: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर

0: तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिशकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर

0: अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
2: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
3: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का GDP पूरे यूरोप अमेरिका के GDP से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
4: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेले ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने

0: से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नेरम 2:30।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है. श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा. उन्होंने सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कार्य में बदलने की जरूरत पर बल दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे. श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है. दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है. इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. उन्होंने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने इस समूह के भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. उन्होंने बताया कि संक्रामक प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
2: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी. हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स रसद आपूर्ति श्रृंखला, सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा. इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्थ तोखायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की. उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की. प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं. वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति साथ भी बैठक करेंगे. प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने, आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की आशा है. पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है. रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है. इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था. इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 2040 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने के बाद लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं. बचाव दल ने बताया

0: दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: carries pay level 9. The appointment will initially be for 1 year or until further orders, extendable as per applicable rules. Eligible candidates should submit their applications through a proper channel along with RPARs for the last 5 years and vigilance clearance in the prescribed format within 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Applications received after the due date, incomplete applications or those not forwarded through proper channel will be rejected. Detailed eligibility criteria, terms and conditions and the prescribed application format is available on the Department of Financial Services website. Do refer to www.financialservices.gov.in under the Office of the Custodian. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सूचित कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारियों तथा ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के लिए साझा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं अधिकृत वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.ibps.in। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की समयावधि 1 सितंबर 2026 को शुरू हो चुकी है और 21 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन नवंबर 2026 में किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक नवंबर दिसंबर 2026 में हो सकती है और परिणाम घोषित किया जाएगा दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में। ऑनलाइन परीक्षा मुख्य आयोजित की जाएगी दिसंबर 2026 अथवा जनवरी 2027 में। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए आईबीपीएस की अधिकृत वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें। वेबसाइट है www.ibps.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सहायक कुल सचिव, परामर्शदाता, सुरक्षा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक तथा कनिष्ठ तकनीशियन। पदों की संख्या, श्रेणी और पात्रता मानदंड के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट iittp.ac.in। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। संयुक्त प्रमुख विधि रिक्तियों की संख्या 2, उप प्रमुख विधि 1 रिक्ति, सहायक प्रमुख रिक्तियों की संख्या 4 तथा बेंच अधिकारी 1 रिक्ति। आवश्यक अर्हताओं, अनुभव आदि के विवरण तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तों और आवेदन के प्रारूप के लिए देखिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट cercind.gov.in। संग्राम वाहन अनुसंधान तथा विकास स्थापन कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आमंत्रित कर रहा है इन विषयों में योग्य उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए, ताकि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। विषय हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग, कुल रिक्तियां हैं 13, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 10, इलेक्ट्रीशियन 12, फिटर 10, मैकेनिक मोटर व्हीकल 8, मशीनिस्ट 5, पेंटर 1, प्लमर 3, टर्नर 5, वेल्डर 5, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 6, शीट मेटल वर्कर 1 तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन 1 रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संग्राम वाहन अनुसंधान और विकास स्थापन की वेबसाइट ncvtmis.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी का

0: कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा.
3: नमस्कार. शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आए हैं देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला. आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा. अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है. तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा. मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा. हेलो सायरा.
4: हेलो वैष्णवी. नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस संडे एडिशन ऑफ परिक्रमा. एंड यस, वेलकम टू अनदर शो. और क्योंकि नाम है शो का हमारे परिक्रमा, तो हस्बे दस्तूर देश की परिक्रमा पे तो निकला जाएगा ही टू सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर देयर इन स्टोर फॉर यू फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स. ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. वैष्णवी
5: जी बिल्कुल.
4: Prime Minister says trust of global south nations grown in BRICS warns against weaponization of technology and critical minerals.
3: Pradhanmantri ne BRICS shikhar sammelan se alag Misr ke rashtrapati Abdul Fattah al-Sisi se dvipakshiya vaarta ki.
4: Indian Railways records 5.4% year-on-year growth in freight loading in August 2026.
3: Gujarat ke ukai kshetra mein 11 inch se adhik barish darj ki gayi. Rajya ke kai dakshini zilon mein mooslaadhar barish ka red alert jari.
4: In Indonesia, around 140 passengers and crew missing after a ferry carrying more than 240 people overturned today.
3: और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से.
4: And as always, we begin our show with the segment Dateline India. And of course, today we are going to talk about the BRICS summit that is being held in India, in our very own national capital.
3: श्रोताओं, दुनिया के बड़े नेताओं की मौजूदगी और वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है. भारत मंडप में हुए सम्मेलन में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के साथ आतंकवाद, वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सम्मेलन ने बदलती वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की बढ़ती भूमिका और भारत के महत्व को भी रेखांकित किया. लेकिन ब्रिक्स की कहानी सिर्फ इन दो दिनों की नहीं है, ये दो दशक से अधिक लंबे सफर की कहानी है. चार देशों से शुरू होकर 5 और फिर 11 पूर्ण सदस्यों तक पहुंचने की. आज साझेदार देशों के साथ ब्रिक्स एक बड़े वैश्विक मंच का रूप ले चुका है. तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और नई दिल्ली सम्मेलन ने दुनिया के सामने क्या नई तस्वीर पेश की, आइए जानते हैं ब्रिक्स के सफर और भारत में हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के प्रमुख पहलुओं को.
4: Well, the 18th BRICS summit that was held at Bharat Mandapam in New Delhi under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, it culminated today. And India organized the BRICS summit for the fourth time. But BRICS itself has come a long way since its inception.
3: बिल्कुल सही कहा सायरा आपने. ब्रिक्स को एक गोलमेज की तरह समझा जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मेज है जहां चर्चा का दायरा वैश्विक है. यहां उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश व्यापार, वित्त, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति और वैश्विक संस्थाओं के कामकाज जैसे मुद्दों पर मिलकर चर्चा करते हैं और सहयोग के रास्ते तलाशते हैं.
4: The word BRIC was coined in 2001 by British economist Jim O'Neill in his research paper Building Better Global Economic, that is BRICS, highlighting the investment potential of Brazil, Russia, India and China.
3: और इसके 8 साल बाद वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन हुआ. इस बैठक में मुख्य रूप से आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर चर्चा हुई.
4: Its 11 members represent around 49.5% of the world's population, about 40% of global GDP and nearly 26% of global trade. When a grouping represents almost half of humanity, it commands a substantial share of the global economy and accounts for more than a quarter of global trade,

0: voice really be ignored? Well, absolutely not. That's precisely why BRICS matters. It has increasingly emerged as an important voice of the global south.
1: ब्रिक्स का विस्तार भी बदलती वैश्विक व्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। ये उन देशों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है जो ग्लोबल साउथ की एकजुटता, अधिक प्रतिनिधित्व और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत करना चाहते हैं। चार देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन से शुरू हुआ ब्रिक अब 11 सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह में बदल चुका है। इसके साथ साझेदार देशों की एक अलग श्रेणी भी है।
0: And in the year 2011, South Africa joined, though BRIC became BRICS. Then came the major expansion in the year 2024, when Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE joined. And in January 2025, Indonesia formally became a full member. Alongside is a separate category of 10 BRICS partner countries. So why are more and more countries interested in BRICS?
1: सारा इसका कोई एक कारण नहीं है। अगर हम देखें तो कुछ देशों के लिए ये आर्थिक सहयोग का मंच है, तो कुछ के लिए कूटनीतिक सहयोग का। कई देश इसे रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करने के अवसर के रूप में देखते हैं, और शायद कुछ देशों के लिए ये इस चिंता से भी जुड़ा है कि कहीं वे किसी महत्वपूर्ण वैश्विक मंच से पीछे ना रह जाएं।
0: That's right, and वो जिसे FOMO कहते हैं, fear of missing out. Well, the BRICS can offer developing countries another platform beyond Western-led institutions and alliances. Its expansion reflects a desire for global South unity, greater representation and a stronger collective voice.
1: ये देशों को अपने आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने का अवसर भी देता है। इससे वे किसी एक बड़ी ताकत या किसी एक गुट पर अत्यधिक निर्भरता कम कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिक्स केवल आकार में ही बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी विविधता और वैश्विक महत्व भी बढ़ा रहा है। ब्रिक्स का सहयोग मुख्य रूप से तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। दूसरा, अर्थव्यवस्था और वित्त।
0: एंड थर्ड, cultural and people-to-people exchanges, because international relations are not built only inside conference rooms. As Martin Luther King Jr. beautifully said that, we may have all come on different ships, but we are in the same boat now. Well, that spirit reflects the significance of BRICS, especially at this hour, when shared challenges demand greater cooperation.
1: वर्ष 2023 में विस्तार के बाद हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने ब्रिक्स को नई विश्व व्यवस्था का स्तंभ बताया था। आइए अब नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर एक नजर डालते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों ने ये दिखाया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
2: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है।
0: BRICS nations have placed special emphasis on enhancing resilience. One important development is the consensus on a BRICS integrated early warning system for prevention of and response to infectious diseases.
1: सारा प्रौद्योगिकी भी सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियारीकरण विकास और प्रगति में बाधा बन सकता है। साथ ही ब्रिक्स देशों ने ये सुनिश्चित करने पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी का लाभ सभी देशों और समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
0: Indeed, the question is not merely who invents the next technology. It is also who gets to use it, who can afford it, and can its benefits reach the global south? And then there is, of course, agriculture. The BRICS Network on Digital Agriculture aims to create new opportunities for farmers by aligning artificial intelligence, geospatial technology, and digital public infrastructure with farmers' actual needs.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहां उनकी बात सुनी जाती है और उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी सहयोग में है।
0: That's right, and as Mahatma Gandhi famously said, Vaishnavi, that in

0: a gentle way, you can shake the world. And well, BRICS in its own way is attempting precisely that. It's reshaping conversations about how the world works.
1: सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। ब्रिक्स देशों ने बातचीत और कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
0: The leaders also addressed one issue of direct importance to India, that is terrorism. BRICS leaders have condemned the 22nd April 2025 Pehelgam terror attack in Jammu and Kashmir.
1: भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के गाला डिनर में एक विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस पेश की गई। इस प्रस्तुति में साझा भावनाओं और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया गया।
0: And the program featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures. Musicians from BRICS member and partner countries came together in a unique collaborative performance.

0: The flags outside Bharat Mandapam represent different countries, but inside the conversation is about a shared future.
1: ब्रिक्स की कहानी चार अक्षरों से शुरू हुई थी। ये पहले पांच देशों का समूह बना और फिर बढ़कर 11 सदस्यों तक पहुंचा। अब साझेदार देशों की भागीदारी के साथ इसका दायरा और व्यापक हो गया है। ब्रिक्स आज एक ऐसी बदलती दुनिया की कहानी है जहां ग्लोबल साउथ अपनी भूमिका और आवाज को मजबूत कर रहा है और इस बदलाव के केंद्र में भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आज से शुरू हुआ। बाबा के समाधि स्थल रामदेवरा पर ध्वजारोहण और मंगला आरती के साथ मेले का आगाज हुआ। मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव की जन्मतिथि पर आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर मेले लग रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खम्मा खम्मा ओ धनिया रोई चेरा धनिया।
3: बाबा रामदेव जी यानी रामसा पीर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित लोक देवता हैं। सभी समुदायों के बीच इनकी गहरी मान्यता और आस्था है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दूज या बाबेरी तीज को इनका जन्म जैसलमेर जिले के रुणीचा गांव में हुआ था। रामसा पीर ने समाज में फैली ऊंच नीच और जाति धर्म की भावना को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, साथ ही समाज को समता का संदेश भी दिया। रुणीचा धाम जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, यहाँ हर साल भाद्रपद मास की दूज से एकादशी तक एक विशाल मेला भरता है जहाँ देश के कोने कोने विशेषकर राजस्थान सहित गुजरात हरियाणा पंजाब और मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु उनकी समाधि पर खड़ाऊं नारियल चुनरी चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर के रामदेरिया गांव में अवतार धाम पर और पाली के घूमटी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में मेला भर रहा है। बालोतरा के बिठुजा स्थित बाबा रामदेव की विश्राम स्थली पर श्रद्धालु रामसा पीर के जयकारों के साथ पहुंच रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर बाबा रामदेव के मंदिरों में दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई हैं। हर ओर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
0: And now we head to Goa. Well, the festive spirit is all set to travel along the Konkan coast. As thousands of devotees head home for Ganesh Utsav, Konkan Railways is ready with special trains, extra passenger facilities and strengthened safety measures to make the journey smoother and more comfortable.
4: Konkan Railway will operate special trains in coordination with the Central and Western Railways to meet the festive rush. Around the clock rail yatri sahayata kendras, holding areas and additional ticketing arrangements will help passengers during the rush. Adding color to the journey, stations will feature festive decorations, rangoli, selfie points and cultural programs. Enhanced security, CCTV monitoring and crowd management measures have also been put in place. Konkan Railway has appealed to passengers to maintain

0: and cleanliness and discipline and enjoy a safe and joyful Ganesh Utsav journey. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwadi News, Parji.
1: श्रोताओं, अब हम चलते हैं गुजरात, जहां वन विभाग के गीर फाउंडेशन द्वारा किए समुद्री अध्ययन से समुद्री जैव विविधता संरक्षण को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। कच्छ के दक्षिणी अखात में हाल ही में हुए एक महत्वपूर्ण समुद्री सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि डॉल्फिन इस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाने वाली समुद्री स्तनधारी बन गई है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा से लेकर गुजरात के समुद्री तटों पर फैली हमारी समुद्री संपदा हमेशा से ही शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के अवसर पर सामने आए इस नए अध्ययन के मुताबिक गीर फाउंडेशन ने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच कच्छ के मरीन नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में गहन सर्वेक्षण किया था। इस दौरान शोधकर्ताओं को 64 अलग अलग अवसरों पर कुल 193 डॉल्फिन देखने को मिली है, जो इस क्षेत्र में कुल दर्ज किए गए समुद्री जीवों का लगभग 36% हिस्सा है। सर्वेक्षण के दौरान सबसे खास बात ये सामने आई है कि डॉल्फिन यहाँ साल भर देखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप में निवास करता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाड़िया ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और समुद्री विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और यह अध्ययन समुद्री जैव विविधता के जतन में मददगार साबित होगा। इस पूरे अनुसंधान को राज्य के समुद्री वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
3: And now from the western coast, we head towards the northeast to Nagaland. For cardamom growers, harvesting is not about getting the crop out of the field. The way the spikes are cut can also affect the health of the plant. Well, in a district of Nagaland, farmer and innovator El Holuto Ayami noticed that local growers were relying on random tools, often damaging the plant in the process. He decided to look for a better way. And for more details, let's listen to our Kohima correspondent.
4: For El Holuto Ayemi, the solution started with a simple piece of 8mm mild steel rod, which he shaped into a harvesting tool at his home in Tichipami village. The tool, called the spike cutter or cardamom harvester, is about 15 inches long. Its sharpened cutting edge is designed to reach into dense cardamom bushes and cut the stalk while reducing damage to the plant.
5: As a cardamom farmer, there was this acute need for a tool to harvest cardamom spikes, as the main cause of cardamom plant destruction was its method of harvesting using self-made and random tools of harvest. The necessity of this tool enabled me to create this spike cutter. It's a tool which was readily accepted by the farming community of our area.
4: In 2020, Mr. Ayemi received national recognition for his innovation from the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, PUSA, in New Delhi. Later, with support from Krishi Vigyan Kendra Zunepoto, his invention was documented and formally received a patent this year. For Mr. Ayemi, the value of the innovation lies in its simplicity, affordability, and usefulness to farmers. Holuto Ayemi continues to provide trainings to farmers through his cardamom farm school in Tichipami village and hopes to develop more practical tools. For him, the approach is straightforward. Start with the field, identify the problem, and build a practical solution for fellow farmers. For Parikrama, this is Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
1: और अब जानते हैं खेल के मैदान में आज की ताजा हलचल। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
6: सन 1929 में आज ही के दिन भारत के महान सपूत जतींद्रनाथ दास ने 25 बरस की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जतींदा के नाम से मशहूर इस स्वतंत्रता सेनानी ने अपने अनूठे अंदाज में अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी थी।
7: जतिन दास का जन्म 1904 में 27 अक्टूबर को कलकत्ता में हुआ था। खेलने कूदने

0: की ही उम्र में वो बंगाल में सक्रिय अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। बाद में जतिंदा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े और भगत सिंह तथा उनके साथियों के साथ काम किया।
1: सिर्फ 17 बरस की उम्र में असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और वो बेहद मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बजाय स्वयं की जिंदगी स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दी थी।
0: उन दिनों जेलों में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार के बदतर व्यवहार ने जतिन दास को विचलित कर दिया। उनकी हालत में सुधार के लिए जतिन दास ने भूख हड़ताल करने की ठान ली। वे 63 दिनों तक लाहौर जेल में अनशन पर रहे और उन्होंने अपनी जान दे दी। युवा क्रांतिकारी के इस बलिदान का जेल अधिकारियों पर असर पड़ा। राजनीतिक बंदियों की हालत सुधारने के लिए उन्हें आखिरकार झुकना पड़ा।
1: इन क्रांतिकारियों को 14 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या से जुड़ा था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले जतिन दास को भूख हड़ताल के दौरान कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिससे उनके फेफड़े खराब हो गए। जतिन दास का पार्थिव शरीर जब बंगाल पहुंचा, तो उसे हावड़ा स्टेशन पर लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे।
0: रिकॉर्ड के मुताबिक जतिन दास के अंतिम संस्कार में 7 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तब राष्ट्र के युवा दधीची के रूप में उनके बलिदान को याद किया था।
1: आज ही के दिन सन 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य को भारत के क्षेत्र में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। सन 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने न तो पाकिस्तान में और न ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना।
0: तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से अनुरोध किया कि वो भारत में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। निजाम ने शुरुआत में हैदराबाद को संवैधानिक राजतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया था। हालांकि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने इसे अस्वीकार कर दिया।
1: हालांकि उन दिनों हैदराबाद के विलय की मांग को लेकर आर्य समाज और स्वामी रामानंद तीर्थ की अगुवाई वाली स्टेट पीपुल्स कांग्रेस आंदोलनरत थी। इस दौरान निजाम के अधीन हैदराबाद रियासत में किसानों का शोषण बढ़ रहा था। रियासत की 40% जमीन पर या तो सीधे निजाम का स्वामित्व था या उसने विशेष जागीर के रूप में कुलीनों को जमीनें दे रखी थी।
0: सन 1940 तक निजाम और उसकी नीतियों के विरुद्ध किसानों के प्रतिरोध ने आंदोलन का रूप ले लिया था और 1946 तक आते आते हालात चरम पर पहुंच गए।
1: 13 सितंबर 1948 की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, करीब 4 बजे भोर में भारतीय सेना राज्य में दाखिल हुई। सेना ने सबसे पहले सोलापुर सिकंदराबाद राजमार्ग पर स्थित नाल दुर्ग किले पर कार्रवाई की। सेना लगातार आगे बढ़ती रही और 17 सितंबर 1948 की शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और इसके बाद हालात बदलते गए और निजाम को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े।
2: आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीधर पाठक की पुण्यतिथि है। द्विवेदी युग के इस प्रतिष्ठित रचनाकार को स्वदेश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य और समाज सुधार की भावनाओं का कवि माना जाता है। उन्होंने वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गोपिका गीत और मनोविनोद जैसी रचनाएं लिखी। श्रीधर पाठक को कवि भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था।
3: Today we are also remembering Roald Dahl on his birth anniversary, and of course a writer on whose stories we have probably grown up with. And we all know that he has created some of the world's best known children's books, including Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG, Fantastic Mr. Fox and James and the Giant Peach. His stories are known for their unusual characters, dark humor, clever plots and strong child protagonists. Roald Dahl remains one of the most widely read children's authors of the 20th century.
2: सुरों को साधना एक बात है, लेकिन उन सुरों में अपनी अलग पहचान बनाना दूसरी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में प्रभा अत्रे ने यही विशिष्ट पहचान बनाई। आज ही के दिन 1932 को पुणे में जन्मी प्रभा अत्रे किराना घराने की प्रमुख गायिकाओं में शामिल हुई। उन्होंने सुरेश बाबू माने और हीराबाई बड़ोदकर से संगीत की शिक्षा ली और आगे चलकर

अंचीय प्रस्तुतियों के साथ संगीत शिक्षण और लेखन में भी सक्रिय रहे। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के प्रतिष्ठित सम्मान मिले। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रभात्रे की आवाज में राकेक मनोहारी प्रस्तुति।

0: और अब हम याद करेंगे ऐसे गीतकार और शायर के बारे में जिनके लिखे गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। हम बात कर रहे हैं अनजान के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। अनजान का वास्तविक नाम वैसे तो लालजी पांडे था। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी संख्या में गीत लिखे और कई लोकप्रिय संगीतकारों के साथ काम भी किया।
1: That's right, even though he chose the name Anjan, लेकिन उनका जो है उनकी हस्ती उनका काम बहुत दूर दूर तक जाना जाता है. Especially in the 50s, he went on to write songs for hundreds of films and became particularly well known for his collaborations with composers such as Kalyanji, Anandji and Bapi Lahiri. Some of his best known songs include Khai Ke Paan Banaras Wala from Dawn and of course O Saathi Re from Muqaddar Ka Sikandar. We have prepared a medley, Vaishnavi. Let's hear that.

बनारसवाला खाई के पान बनारसवाला खुली जाए बंद पतल का ताला खाई के पान।

0: सारा अनजान के लिखे गीतों की एक अलग ही बात थी. जब भी ये गीत सुने हमेशा उस दौर में लोग पहुंच जाते हैं.
1: That's right.
0: और हर गीत उनके, लगभग हर गीत उनके काफी सुपरहिट रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. भगवत रावत उन कवियों में थे जिन्होंने कविता को आम जीवन की छोटी बड़ी अनुभूतियों से जोड़ा. आज ही के दिन 1939 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के टहरका में जन्मे भगवत रावत कवि होने के साथ साथ आलोचक और शिक्षक भी रहे. उन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार, वागीश्वरी सम्मान

குலதயா பலத்பாதாம் ராதாம் பலத்பாதாம் ராதாம்.

0: தொடர்வது இந்தியல் செய்தி அறிக்கை டில்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने

0: आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही। चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी நேரம் 6:05.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
2: விளம்பரங்களை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம் நேர்களே.
4: எவ்ரி கிரேட் ஜேர்னி பிகின்ஸ் வித் பீப்புள் கமிங் டுகெதர் டு லிசன்.

0: आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए मिलकर आगे बढ़ना। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाए जाने की घोषणा की।
1: यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, शांति और सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण सामने रखा गया। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि नई दिल्ली घोषणा में वैश्विक शासन और विकास को लेकर ब्रिक्स देशों ने क्या रुख अपनाया, आर्थिक और वित्तीय सहयोग को कैसे आगे बढ़ाने पर बल दिया गया और कृषि, ऊर्जा, तकनीक तथा डिजिटल सहयोग के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद की। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। घोषणा में अधिक न्यायपूर्ण, समान, प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
2: ब्रिक्स ने बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही उभरते बाजारों और विकासशील देशों की वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बताई गई है। घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता का भी समर्थन किया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक मामलों में अधिक भूमिका देना और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में ब्राजील और भारत की बढ़ती भूमिका की आकांक्षा के लिए समर्थन दोहराया है। ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में सुधार का भी समर्थन किया है। बढ़ते संरक्षणवाद और एकतरफा शुल्क तथा गैर शुल्क उपायों पर चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि इससे वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है। घोषणा में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और चिंताओं को सामने रखने में ब्रिक्स की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया है।
0: श्रोताओं, अब ये जानना जरूरी है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स ने शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर क्या रुख अपनाया है।
3: ब्रिक्स देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी संघर्षों और बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। घोषणा में संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत, परामर्श और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। साथ ही संघर्षों को रोकने और उनके मूल कारणों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। मध्य पूर्व की स्थिति पर ब्रिक्स ने बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकतम संयम बरतने तथा ऐसे कदमों से बचने का आह्वान किया जो स्थिति को और खराब कर सकते हैं। नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। गाजा की स्थिति पर ब्रिक्स ने युद्ध विराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने की अपील की है। आतंकवाद के खिलाफ भी ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाया है। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ने का विरोध किया गया है। इसके साथ ही युवाओं में कट्टरपंथ और उग्रवाद को रोकने के लिए भी ब्रिक्स देशों के बीच अनुभव साझा करने की आवश्यकता बताई गई है।
0: श्रोताओं, अब ये भी जानना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।
4: ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। घोषणा में कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियां आपस से जुड़ी हुई हैं और विकासशील देशों के सामने विकास की कई चुनौतियां हैं। ऐसे में राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक और प्रभावी समाधान जरूरी है। ब्रिक्स ने अधिक मजबूत और समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ और प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया है। सीमा पार भुगतान के क्षेत्र में भी ब्रिक्स देशों ने

0: व्यापारिक समाधान तलाशने पर जोर दिया। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश के निपटान सहित तेज कम लागत वाले सुरक्षित पारदर्शी और अधिक सुलभ सीमा पार भुगतान तंत्र विकसित करने पर चर्चा आगे बढ़ाने की बात कही गई है। छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs के लिए वित्त तक आसान पहुंच को भी महत्वपूर्ण माना गया है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स टास्क फोर्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्थापना की पहल भी की गई है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साझा विकास और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
1: श्रोताओं, ब्रिक्स घोषणा का एक महत्वपूर्ण पक्ष कृषि, ऊर्जा और तकनीक से जुड़ा सहयोग भी है। आइए इसे समझते हैं।
2: ब्रिक्स देशों ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स

0: भी की गई है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साझा विकास और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना है।
1: श्रोताओं, ब्रिक्स घोषणा का एक महत्वपूर्ण पक्ष कृषि, ऊर्जा और तकनीक से जुड़ा सहयोग भी है। आइए इसे समझते हैं।
2: ब्रिक्स देशों ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स देश वैश्विक खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाना तथा खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना जरूरी है। भारत की अध्यक्षता में इंदौर में हुई ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत किया गया। साथ ही ब्रिक्स एग्रीन यानी एग्रो इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति बनी है। यह एक सहयोगी, गैर बाध्यकारी और किसान केंद्रित व्यवस्था होगी। किसानों के बीज अधिकारों से जुड़े साझा मुद्दों पर चर्चा के लिए ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम्स शुरू करने का भी स्वागत किया गया है। कृषि के क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का नेटवर्क बनाने तथा डिजिटल कृषि में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिक्स ने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से स्थिर आपूर्ति बनाए रखने, महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कम उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन के लिए साझा मानकों और प्रमाणन व्यवस्था पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल सहयोग की।
3: ब्रिक्स घोषणा में डिजिटल तकनीक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और बेहतर सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। ब्रिक्स देशों ने एक संप्रभु और आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स के माध्यम से बड़े स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराने और आर्थिक तथा सामाजिक अवसर बढ़ाने की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। इसके लिए ब्रिक्स देशों का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी शुरू करने और कुछ डिजिटल समाधान के पायलट प्रोजेक्ट चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हुए इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता, समावेशिता और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया गया है। भारत में फरवरी 2026 में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट का भी स्वागत किया गया है। ब्रिक्स देशों ने वैश्विक AI सहयोग को आगे बढ़ाने और AI के वैश्विक शासन से संबंधित ब्रिक्स लीडर्स स्टेटमेंट को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। तकनीकी सहयोग में अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, क्वांटम तकनीक और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्र भी शामिल है।
1: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स घोषणा केवल एक शिखर सम्मेलन का दस्तावेज नहीं है। इसमें वैश्विक शासन को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने, बहुपक्षवाद को मजबूत करने, विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा दिखाई गई है। कृषि और खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक ब्रिक्स ने व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। वहीं शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति को महत्व देते हुए आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई है। साथ ही 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 19वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को समर्थन दिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।
4: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स संघः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणित समुदायमात्रः, अपितु वैश्विक विषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधान पारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नवदिल्ली घोषणा पत्रम ब्रिक्स देशानां भावी सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य आह्वानम्, प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां

0: 3717106, and of course do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत, और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। श्रोता इससे पहले इन नंबरों से पहले हमारे फ़ोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट ब्रिक्स समिट विल प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन फॉर शेयर्ड विजन एंड फ्यूचर कोऑपरेशन। Global crude oil prices surged around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha, BRICS शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त, और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
0: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ये खबरों का सिलसिला शुरू करें। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है, बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है, और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर सत्र के समापन भाषण में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है।
3: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप

0: और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा।
1: And I can see our first caller connecting from Delhi. Jeevan ji, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: नमस्ते मार्केट गोंडा टीम, मैं करंटली SIP कर रहा हूँ, पराग वारेकर फ्लेक्सी कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीट लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था NFO आया था HDFC बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास, इन सब में मैं कर रहा हूँ SIP। तो एक ये जानना चाह रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ, इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ, ये फंड कैसे हैं, क्या मेरे को कोई लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी।
3: जीवन जी, मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है। आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जिसकी आप पूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है। आप इन्हीं फंड्स में आप SIP के माध्यम से लगा रहे हैं, लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: जी, और अभी आशुतोष, अगर हम फंड्स की हालत देखें, अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने, कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अभी चलते हैं, एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104.61 पर बैरल। West Texas Intermediate Crude October Futures soared 9.4% to end at $100.05 per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge, and also if you could tell us about the latest situation on the ground?
5: Hi, Sarabjit. Of course, the resumption of US-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4-5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we've seen a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently, in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this all, though, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that is on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman and discuss the possible way outs of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting. And also, without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
1: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
6: Ma'am, mera sawal ye hai ki mere paas small cap, mid cap, flexi cap aur contra fund hai.

0: स्मॉल कैप में मेरी 30,000 की सिप है, मिड कैप में 30,000 की, फ्लेक्सी कैप में 25,000 की, कॉन्ट्रा में 10,000 की। तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल, बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन करता रहूंगा। अब बस यही मेरे को उनसे पूछना था सर से कि क्या ये सही वो है चुनाव मेरा।
1: जी, आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल, एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है, और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है। बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफ़ी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा। ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टांस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए।
2: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
1: जी, तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़ें क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा। तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं।
2: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते मार्केट फंड।
2: नमस्कार
3: सर, ये SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे होते हैं? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट ऑफ नॉट? एंड सेकेंडली, इसका एग्जिट क्या होता है, इसमें कब निकल सकते हैं? एक साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है? एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड, डू वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट or we can simply buy as we buy other mutual firm on the SBI mutual fund website or any other website? So SIF ka reason bataiye sir retail investors ko humko. Thank you.
1: जी, तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है। क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक SIF में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट ट्राई दूंगा क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जिन निवेशकों का कम से कम 50-60 लाख या उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो SIF फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से अभी SIF काफ़ी नए हैं। जो सबसे पुराना SIF फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में एक साल कंप्लीट होगा, तो बहुत नए फंड्स हैं। आप अभी इनको ट्रैक करिए, इनको समय दीजिए, मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं, जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड। तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए, ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए, अपने आप बातें सामने आएंगी। काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स SIFs, तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा। बाकी जहाँ तक इनके ऑपरेशनल मोडेलिटीज़ की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही ऑपरेट करते हैं, उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं।
4: All right, our next caller joins us from Maharashtra. Gurunath, please ask your question.
5: जी मैम, नमस्कार।
4: जी नमस्कार
5: मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब SIP करके ही जाना चाहिए, और जो फिलहाल जो हालात है, मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ FIs भी या से पैसा निकाल के ले गए, डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है? क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले

0: भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में? थैंक यू मैम
1: जी। आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा। तो करेक्शन कनेक्शन भरपूर है, कनेक्शन 100% है, वही उतार चढ़ाव। बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे। लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव हैं वो तो बाजार के अधीन है, तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता। तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही, और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं,
2: जी वो था कि अभी जो हालात है, मार्केट कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? FPIs पैसे निकाल रहे हैं, हालांकि इन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं।
1: जी तो देखिए, अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप SIP के माध्यम से मार्केट में निवेश करिए, और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है। जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे। तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
3: All right, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete practical development oriented outcomes during the BRICS summit which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry Sudhakar Dalela said there are over 50 concrete outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reform. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
2: जी, आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की, और NASDAQ में जो असर हो रहा है। लेकिन अभी कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि NASDAQ का जो ETF है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देखकर?
1: जी तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ETFs हैं, NASDAQ या S&P 500, NASDAQ Q50 को जो फॉलो करने वाले ETFs हैं, उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो ये NAV से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था। इनके ऊपर वो दायरा था उसके ऊपर सर्किट लग जाता था, 2 दिन पहले की NAV से ये 20% से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है, और अब उसको उनके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि NAV से। तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है, तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है इंटरनेशनल ETFs में ही। ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ETFs में प्रॉब्लम यह है कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, RBI की लिमिट्स हैं। तो इसलिए जब भी ये देखा गया है कि जब भी कोई चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है तो उसकी नई यूनिट्स क्रिएट होती हैं, सप्लाई उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है और दाम अपने आप NAV के नज़दीक आ जाता है। इन फंड्स में वो मैकेनिज़म अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है। तो इस

0: कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है, तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है उस वजह से ये काफ़ी प्रीमियम पे हैं। अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आप अगर किसी भी विदेशी ETF में निवेश करने की, इंटरनेशनल ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड अगर 50% प्रीमियम पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगले 2 साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है तो 2 साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें। तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपये की दाम वाली चीज़ आप 150 रुपये में खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी केयरफुली अगर आप स्टॉक मार्केट पे ETF की यूनिट्स खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल ETF की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी
1: जी। यानी ज़्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहें
0: जी।
2: So I've been listening to all your piece of advice very carefully, Ashutosh, and you spoke about risk appetite, you mentioned time horizon, not reacting to every movement in the market. So is consistency and patience, are these the key attributes when it comes to investing in the mutual fund industry?
0: Oh, absolutely. In fact, there is a very old adage which is said that time in the market is far more important than timing the market.
2: Well said.
0: So a lot of people try to time their entry. They want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined, keep investing periodically, match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
2: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
3: Hello.
1: Ji, Dev, apna sawal poochhe.
3: Hello, sir.
1: Ji, sawal
3: poochhe. Sir, mere beke abhi 18 saal ki hui hai aur mujhe uske liye kuch fund khareedne hain, lump sum amount lagana hai. Aur Arjun 5 se 10 saal ka hai. Aur mere paas Flexi Cap fund already hai, ek large cap bhi hai, ek PSU hai aur ELSS hai. ये फंड मेरे पास 2021 से हैं सारे, और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना, तो किस पे है मुझे लगाना चाहिए? मेरे पास अलग अलग AMCs के फंड हैं।
0: जी, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई नया फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही देख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं। अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपिटाइट है, तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं, आप उनमें निवेश करते रहें। ELSS का अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो ELSS में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप ELSS फंड उस केस में बंद कर सकते हैं। और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया, या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है।
1: जी, और नज़र डालें FPIs के हाल पर। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं। जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपये की निकासी की है। कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपये की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई। हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा। इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगले कॉलर है हमारे दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टी कैप काफी फेमस मल्टी कैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ,

0: हूं, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब चल खराब क्या है मतलब उतना लोग कहता है साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब क्या सर, आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए, मेरा सिप में भी यूज मनी जा रहा है उसमें ना, क्या उसको बंद करके उसका साथ में जो दूसरा फंड है जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? थैंक यू
1: जी। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं दिखती है कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीज़न से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है। अगर ये फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना SIP बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं।
2: जी, और देखें पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। MCX में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 2,34,974 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
3: Domestic investors are expected to focus on key market triggers in the holiday shortened week ahead, including the US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and bond yields. Indian stock markets will remain closed tomorrow for Ganesh Chaturthi. Meanwhile, market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. The primary market is also set for another busy week with 5 main board IPOs opening for subscription. Global monetary policy will remain in focus beyond the US, with the Bank of England and Bank of Japan also scheduled to announce their policy decisions during the week.
2: आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
3: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surge around 9% last week. And domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा घोषणा पत्र, साझा विजन और भविष्य के सहयोग के

0: स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने ये दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेफ के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडे के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि ब्रिक्स सामूहिक प्रयासों से इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: श्री दलेला ने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। श्री दलेला ने बताया कि शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स व्यवसाय परिषद और ब्रिक्स महिला व्यवसाय गठबंधन की भी रिपोर्ट मिली, जिनसे कारोबारियों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों की राय नेताओं तक पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। यमन में ईरान समर्थित हौसी विद्रोह

रोहियों ने पड़ोसी देश सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने लाल सागर के तट पर विद्रोहियों के हालिया कब्जे को अत्यंत चिंताजनक बदलाव बताया है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: திஸ் இஸ் டெல்லி. பிளீஸ் ஸ்டாண்ட் பை ஃபார் ஆர் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. வி நவ் பிரிங் யூ ப்ரோக்ராம் ஸ்வர் தரோஹர் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கைவல் இன்புட்ஸ் ஆஃப் ஆகாஷ்வாணி. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर. नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
2: और मैं निशा आपका स्वागत करते हैं.
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे उस गायिका से जिसे सरस्वती माँ का वरदान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.
2: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की. उनके गायन को सुनना सिर्फ एक आवाज को सुनना भर नहीं है, बल्कि भावनाओं के सागर में गोते लगाने जैसा अनुभव है. चाहे खुशी के गीत हो या गम के, प्यार के गीत हो या देशभक्ति गीत, लता जी की आवाज हर गीत में अपना एक अलग प्रभाव छोड़ जाती है.

0: श्रोताओ, लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाट्य कलाकार थे। लता जी का नाम पहले हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपने नाटक भावबंधन की एक पात्र लतिका से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया।
1: उनकी माँ का नाम शेवंती बाई था। भाई बहनों में लता जी सबसे बड़ी थी और उनके छोटे भाई बहन थे आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। मंगेशकर परिवार ने आगे चलकर भारतीय संगीत जगत को नई ऊंचाइयां दी।
0: लता जी ने अपने संगीत शिक्षा के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: मेरे पिताजी की ड्रामा कंपनी थी, वो उसमें काम करते थे। वो वैसे क्लासिकल भी गाते थे और एक दिन ऐसे हुआ कि उनके कोई शिष्य थे जो रियाज कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि तुम थोड़ी देर ये राग इस पे रियाज करो, मैं

0: और उनके छोटे भाई बहन थे आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। मंगेशकर परिवार ने आगे चलकर भारतीय संगीत जगत को नई ऊंचाइयां दी।
1: लता जी ने अपने संगीत शिक्षा के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
2: मेरे पिताजी की ड्रामा कंपनी थी, वो उसमें काम करते थे। वो वैसे क्लासिकल भी गाते थे और एक दिन ऐसे हुआ कि उनके कोई शिष्य थे जो रियाज कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि तुम थोड़ी देर ये राग इस पे रियाज करो, मैं जाके आता हूँ। तो मैं बाहर खेल रही थी गैलरी में, तो वो कुछ गा रहे थे, वो थोड़ा सा गलत गा रहे थे, तो मैंने जाके उनको ठीक किया। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मेरे फादर ने बाहर से सुना, उस वक्त तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी मदर को रात को उन्होंने बुला के कहा कि भाई इतना अच्छा सिंगर घर में है और मैं बाहर लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तो कोई खास अच्छी बात नहीं। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी ने मुझे सुबह उठा के कहा कि तुम बैठो और मैं तुम्हें सिखा। मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद मैंने अमान अली खान साहब और अमानत खान साहब से भी गाना सीखा है थोड़ा, पर सबसे पहले मैं अपने फादर को इस बात का ये देती हूँ कि आज जो मेरा नाम हुआ है उसके पीछे उनका ही आशीर्वाद है और उन्होंने जो सिखाया है उसी को मैं ज्यादा मानती हूँ।
0: जब लता जी मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। ये उनके परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। इस कठिनाई के बीच सबसे बड़ी संतान होने के नाते लता जी ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। यही जिम्मेदारी उन्हें फिल्मों की ओर भी ले गई। हालांकि लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। मंगला गौर, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी छोटी भूमिकाएं अदा की।
1: 1942 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गीत गाया। हालांकि वो गीत फिल्म में शामिल नहीं हो पाया था। मुंबई में शुरुआती दिनों में लता जी को कई अस्वीकार झेलने पड़े। उनकी पतली आवाज को कई लोग कमजोर मानते थे क्योंकि उस दौर में भारी आवाजों का चलन था।
0: लेकिन संगीत का गुलाम हैदर ने लता जी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी फिल्म मजबूर में गाने का अवसर दिया। आइए सुनते हैं कैसे हैदर जी ने लता जी के करियर को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: मैं मास्टर गुलाम हैदर साहब के यहाँ गई, मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे सुना और सुनने के बाद एक गाना मुझे उन्होंने नया बताया जो शहीद फिल्म का था। मेरी आवाज उन्होंने रिकॉर्ड की, एस मुखर्जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये आवाज चलेगी नहीं, ये बहुत पतली आवाज है हीरोइन के लिए, सूट नहीं करेगी। तो ये बात मुझे मालूम नहीं थी, पर मास्टर गुलाम हैदर साहब ने कहा लता को मैं गवाऊंगा और मैं देता हूँ कैसे नहीं, अच्छी लगी आवाज और आप मुझे याद करेंगे जब मैं लता से गाना लूंगा। मैं बैठी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो मुझे कहने लगे कि लता तुम मेरे साथ चलो और हम लोग यहाँ से मालाड जाएंगे बॉम्बे टॉकीज में, मैं वहाँ एक पिक्चर कर रहा हूँ उसके लिए हम गाना करेंगे। तो हम लोग स्टेशन पे खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना गाओ और फिर उन्होंने गा के बताया दिल मेरा तोड़ा और मैंने वही गा के बताया, तो उनको बहुत अच्छा लगा।

0: श्रोताओं, 1950 और 60 के दशक में लता जी ने हजारों हिट गाने दिए। प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, जैसे गीत आज भी हर दिल में बसते हैं। वो गानों को सिर्फ गाती नहीं थी, बल्कि उनके गायन में गीत के हर शब्द की भावना प्रकट होती थी। लता जी ने भावपूर्ण तरीके से गाने के विषय पर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि गाने का मूड क्या है वो समझ लें, और कविता जो होती है उसको समझ के गाना बहुत जरूरी होता है। और मैं पहले गाने की जो मीनिंग है उसको देख लेती थी, और फिर मैं महसूस करती हूँ जब भी मैं गाती हूँ कि अगर मैं वो कैरेक्टर होती और मैं इस तरह अगर सिचुएशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करती, और ये सोच के मैं गाती हूँ।
2: लता जी की आवाज लगभग हर बड़ी अभिनेत्री की पहचान बन गई। मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला, नरगिस, वहीदा रहमान, सायरा बानो, इन सब के अंदाज को लता जी ने अपनी सुरीली आवाज में जीवंत कर दिया। उनकी आवाज हर अभिनेत्री पर बिल्कुल फिट बैठती थी।
0: लता जी ने केवल हिंदी ही नहीं, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, भोजपुरी सहित 26 से अधिक भाषाओं में गाने गाए।
3: मैंने कोशिश की है कि मैं जिस भाषा में गाऊं बराबर उसका मतलब आए, और सुनने वाले ये कहें कि अरे ये बिल्कुल सही गा रही है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि आपने अगर बंगाली गाना गाया तो बंगाली लोगों को ये लगना चाहिए कि अरे ये कोई बंगला लड़की है। तो ये मैंने ज्यादा हर भाषा में कोशिश की है, और मैंने 26 भाषाओं में गाया है।
2: लता जी को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे पहली भारतीय गायिका थी जिन्हें विदेशों में भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिली। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया।
0: उन्होंने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया। लता जी न केवल एक महान गायिका थीं, बल्कि एक सरल और विनम्र इंसान भी थीं। उन्हें क्रिकेट देखने का बहुत शौक था और सचिन तेंदुलकर उनके प्रिय खिलाड़ी थे। जीवन भर उन्होंने अविवाहित रहकर केवल संगीत को ही अपना साथी बनाया। वे मानती थीं कि संगीत ही उनका असली परिवार है।
2: लता जी को सफेद रंग की साड़ी पहनना काफी पसंद था। इस विषय पर उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: मुझे सफेद बचपन से पसंद है। मैं जब छोटी थी तब भी मैं घाघरा चोली पहनती थी, वो भी सफेद ही पहना करती थी। पर बीच में एक ऐसा समय आया था कि मैं कलर साड़ियां पहनना शुरू की थी मैंने, और हर रंग की मैं साड़ी पहनती थी। पर एक दो साल के बाद एक दिन ऐसे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि इस बात का तो कोई अंत ही नहीं है कि आज मुझे गुलाबी पसंद आई तो कल पीली तो परसों नीली, और इसका कोई एंड नहीं है। इसीलिए मैंने एक ही दिन में डिसाइड किया कि मैं आज से सफेद के सिवा कुछ नहीं पहनूंगी।
2: लता जी की आवाज सिर्फ प्रेम गीतों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने भक्ति गीत, गजलें और देशभक्ति गीत भी गाए।
0: 1963 में चीन युद्ध के बाद शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के रामलीला मैदान में गाए गए उनके गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुनकर पूरा देश भावुक हो उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। ये गीत आज भी भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित कर देता है।

0: मुझे फिर और लोगों ने वहाँ सुना, जैसे अनिल विश्वास जी थे और खेमचंद प्रकाश जी थे, और फिर उनके गाने मैंने लाए, फिर श्याम सुंदर जी ने सुना, फिर उन्होंने बुलाया, इस तरह मेरा प्लेबैक सिंगिंग का ये सफर शुरू हुआ।
1: 1949 की फिल्म महल में लता जी ने आएगा आने वाला गीत गाया। ये गीत अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। इस गीत के आने के बाद तो पूरा देश लता जी की आवाज का दीवाना हो गया। ये फिल्म भी हिट रही और ये गीत लता जी और मधुबाला जी दोनों के करियर के लिए सौभाग्यशाली रहा। इस फिल्म के बाद लता जी के गीतों का दौर शुरू हो गया।

0: 6 फरवरी 2022 को लता जी इस संसार से विदा हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश ने शोक व्यक्त किया। सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लाखों लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम प्रणाम करने पहुंचे।
1: लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, वे भारत की आत्मा थी। उनकी आवाज आने वाली कई सदियों तक गूंजती रहेगी। तो अब हमें यानी आशुतोष कुमार को और
0: निशा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था निशा और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया था अनुराग उपाध्याय और विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।
1: यू आर लिसनिंग टू द वीकली प्रोग्राम स्वर धरोहर बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ आकाशवाणी। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता. भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता. और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी. वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे. दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है.
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है. पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और

0: मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेफ के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ

0: बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
5: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस

0: से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
4: Aap sabki maujoodgi. ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिन

0: there is no repairing work in the shooting. Then for that, even if you have to travel 10 kilometers, you travel, make a good base, establish yourself at up to certain level, and then you can have all these liberties and facilities.
1: NRI President Kalikesh Singh Deo is positive that the plans to make shooting gain a more solid footing around the country will bear fruit. He says that the roadmap focuses on widening the base, strengthening the peak, and making shooting sport accessible nationwide, besides the long-term talent identification pipeline for the next two Olympic cycles. He also speaks of collaborating with state government to decentralize infrastructure by converting state-run ranges into regional high-performance centers to give athletes access to international standard facilities closer to home and give the sport stronger roots across the country. The unflinching support of government has helped India's parachuters also make an indelible mark. Rifle shooter Avani Lakhera and pistol ace Manish Narwal got gold medals in the Tokyo Paralympic Games in 2021. Avani became the first Indian shooter to win another Paralympic Game gold medal last year. As we come to the end of this journey, let's join Mansher Singh as he narrates how Manisha Kheer, a fisherman's daughter, rose to be a part of a medal-winning Indian team.
2: Manisha is one of those ones who came with her father on, as you very rightly said, on a cycle to see what shooting was, because she heard the pop-pop from her village, which is close to the shooting range. She never went back. 4 years later, she broke the world junior world record in Chengwan at the World Championships.
3: Guns and Glory. That was a feature written and narrated by senior sports journalist Raja Raman, bringing out the story of the rise of shooting as a sport in India. Produced by Nitish Arora, this was a presentation of the Central English Feature Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani. Please stay tuned in for our next announcement that follows shortly.
4: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे सहयोग और प्रेरणा हो प्रगति मानवता के हित में योगदान दे दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है
5: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है
4: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा
5: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की भी उम्मीद करती है प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकसित केंद्रित परिणाम निकले विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की पिछले तीन दिनों में प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठक की उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी कई अनौपचारिक बैठकें भी की प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान मिस्र इंडोनेशिया

0: फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बरूंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले श्री मोदी ने कल इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात की थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल गुजरात में बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS's diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver the last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट-माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS groupings as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with the heads of state and governments, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provide an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. The Prime Minister today held bilateral talks with leaders of Kazakhstan, Egypt, Indonesia and Philippines, South Africa, Burundi, Nigeria and Uganda. Mr. Modi also met Nigerian Vice President Kashim Shettima. Yesterday, Mr. Modi held bilateral meetings with leaders from Ethiopia, Malaysia, UAE, Vietnam and China. On Friday, the Prime Minister met leaders from Russia and Iran and also the UN Secretary General. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said, "The nature of the diamond trade is changing with the emergence of lab-grown diamonds." The Home Minister said that lab-grown diamonds

0: Diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 170 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Moshi in China today. The Indian men's team defeated South Korea 4-1 in the final to successfully defend its title. The Indian women's team also emerged victorious, defeating host China 1-0 in the final. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. In women's cricket, India have set a target of 184 runs for defending champion Sri Lanka in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai. In reply, Sri Lanka were at 18 for 1 in 3.3 overs when reports last came in. Opting to bat, India posted 183 runs for the loss of 5 wickets in their stipulated 20 overs. Shefali Verma top scored with 68 of 39 deliveries, while Smriti Mandana contributed 59 of 39 balls. Earlier, Indian skipper Harmanpreet Kaur won the toss and elected to bat. Seven-time champions India have reached the final, topping Group A with 3 wins before defeating Bangladesh by 40 runs in the semi-final. Sri Lanka also remain unbeaten in the group. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 157 runs for India in the first T20 international of the 3-match series in Delhi. In reply, India were 113 for 1 in 9 overs when reports last came in. Put into bat, Afghanistan posted 156 runs for the loss of 8 wickets in their stipulated 20 overs. Azmatullah Omarzai was the top scorer, remaining unbeaten on 64 of 44 balls for India. Arshdeep Singh clinched 3 wickets earlier. Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bowl. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Vishu Drapan ke saath main Mohammad Zubair. Mukhya samachar. नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का समापन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा समूह पर बढ़ते भरोसे का दावा किया और प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी. प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की. भारत ने ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की निंदा की. 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया. हॉर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में तनाव के बीच ईरान और खाड़ी देशों की बैठक कल ओमान में होगी. भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने चीन के मोची में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने. और अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे. दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है.
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है. पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है.
1: श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर

0: रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल नगुएन त्रुओंग थांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्तों को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर केंद्रित थी। भारत ने ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज MTEL गैया पर हुए हमले की निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है, जबकि एक लापता भारतीय नागरिक की तलाश और बचाव अभियान जारी है। दूतावास ने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया है। भारत ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान दोहराया है। भारत ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। ईरान अमेरिका संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है।

0: और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालीमंतन जा रही थी और सुराबाया से बोर्नियो द्वीप के बंजार मासिन के लिए रवाना हुई थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मिड टर्म

0: है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। नौका पूर्वी जावा से दक्षिण कालीमंतन जा रही थी और सुराबाया से बोर्नियो द्वीप के बंजार मासिन के लिए रवाना हुई थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान समझौता करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मिड टर्म चुनाव से पहले या उनके ठीक बाद युद्ध खत्म हो सकता है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोची में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक दक्षिण के देशों द्वारा समूह पर बढ़ते भरोसे का दावा किया और प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। भारत ने ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। 13 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Curtains come down on BRICS Summit 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi asserts Global South Trust in Group growing. Warns against weaponization of technology and critical minerals. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on sidelines of summit. India condemns attack on the commercial vessel of Oman. 13 Indian crew members rescued. Iran and Gulf countries to meet in Oman tomorrow as tensions continue in the Strait of Hormuz and the Red Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinched Junior Asia Cup titles at Mo Chi in China. And in US Open tennis, top seed Alexander Zverev to take on Ben Shelton in men's singles title clash tonight. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions.
2: Aap sab ki maujoodgi, BRICS ki badhti relevance, openness, और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: Mr. Modi also stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact. Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi noted that the trust of Global South nations in BRICS has grown because their voices are heard and their experiences are respected. The Prime Minister cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress.
2: Technology or critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity पर बल दिया है।
1: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. The Prime Minister also extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. We have a report from our correspondent.
3: The two-day summit focused on resilience, innovation, cooperation, and sustainability with more than 50 practical outcomes. The summit deliberated on

0: work here is done. Please stand by now for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और

0: कनाडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Award ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। श्रोता, इससे पहले इन नंबरों से पहले हमारे फोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surged around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Q's next week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha BRICS शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
0: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research

0: or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: آئیے خبروں کا سلسلہ شروع کریں. آج کی بڑی خبر, پردھان منتری نریندر مودی نے آج کہا کہ برکس صرف دیشوں کا سموہ نہیں ہے بلکہ سمادھانوں کا ایکو سسٹم ہے, اور پچھلے دو دنوں کی چرچاؤں نے اس وشواس کو اور مضبوط کیا ہے. شری مودی نے لچیلے پن, نواچار, سہیوگ اور ستت وکاس پر ستر کے سماپن بھاشن میں آشا پرکٹ کی कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
1: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा. नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा. उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है.
2: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा. इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है. ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा. इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा.
0: एंड आई कैन सी आवर फर्स्ट कॉलर कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली. जीवन जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
3: नमस्ते. मैं करंटली SIP कर रहा हूँ, पराग वारेकर फ्लेक्सी कैप 10,000, बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीट लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था NFO आया था HDFC बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास, इन सब में मैं कर रहा हूँ SIP. तो एक ये जानना चाह रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ, इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ, ये फंड कैसे हैं, क्या मेरे को वही लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी.
4: जीवन जी, मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है. आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जो आप जिसकी आपूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है. आप इन्हीं फंड्स में आप SIP के माध्यम से लगा रहे हैं, लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है, और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं.
1: जी, और अभी आशुतोष, अगर हम फंड्स की हालत देखें, अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने, कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और

0: किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अभी चलते हैं, एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104.61 पर बैरल। West Texas Intermediate Crude October Futures soared 9.4% to end at $100.05 per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge? And also, if you could tell us about the latest situation on the ground.

0: tell us about the latest situation on the ground.
1: Hi, Sarabjit. Of course, the resumption of US-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4 to 5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we've seen a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this all, though, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that's on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman and discuss the possible way outs of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting, and also without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
0: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
2: Ma'am, mera sawal ye hai ki mere paas small cap, mid cap, flexi cap aur contra fund hai. Small cap mein meri 30,000 ki sip hai, mid cap mein 30,000 ki, flexi cap mein 25,000 ki, contra mein 10,000 ki. तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ. और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल, बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन करता रहूंगा. अब बस यही मेरे को उनसे पूछना था सर से कि क्या ये सही वो है चुनाव मेरा.
3: जी, आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा आपका स्मॉल, एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है, और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में. देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है. बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफ़ी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा. तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा. जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा, शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा. तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा. ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टेंस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए.
4: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
3: जी, तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें. लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़े, क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा. तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं.
4: जी, अगले कॉलर हैं भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
5: नमस्ते मार्केट कंट्रोल.
4: नमस्कार
5: सर. ये SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे होते हैं? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट ऑफ नॉट? एंड सेकेंडली, इसका एग्जिट क्या होता है, इसमें कब निकल सकते हैं? एक साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है? एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड, डू वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट? Or we can simply buy as we buy other mutual fund on the SBI mutual fund website or any other website. So, SIF ka rahe sir, bataiye sir, retail investors ko humko. Thank you.
3: जी, तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है. तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक SIF में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट ट्राई दूंगा, क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है. तो जिन निवेशकों का कम से कम

0: 50-60 लाख या उससे ज्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो SIF फिर भी कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन मेरे लिहाज से अभी SIF काफी नए हैं. जो सबसे पुराना SIF फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में 1 साल कंप्लीट होगा, तो बहुत नए फंड्स हैं. आप अभी इनको ट्रैक करिए, इनको समय दीजिए. मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए. कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं, जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड. तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए. ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए, अपने आप बातें सामने आएंगी. काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स SIFs, तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले, उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा. बाकी जहां तक इनके ऑपरेशनल मोडेलिटीज की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं, उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है. तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं.
1: All right, our next caller joins us from Maharashtra, Gurunath. Please ask your question.
2: जी मैम नमस्कार.
1: जी नमस्कार.
2: मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब SIP करके ही जाना चाहिए, और जो फिलहाल जो हालात है मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, कुछ FIs भी या फिर पैसा निकाल के ले गए, डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे. तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है, क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं, और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में? थैंक यू मैम.
0: जी आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है. अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा. तो कनेक्शन भरपूर है, कनेक्शन 100% है, वही उतार चढ़ाव. बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है, सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे. लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव है वो तो बाजार के अधीन है, तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता. तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही, और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा. जहां तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं,
3: जी वो था कि अभी जो हालात है मार्केट कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? FPIs पैसे निकाल रहे हैं, हालांकि इन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं.
0: जी तो देखिए अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप SIP के माध्यम से मार्केट में निवेश करिए, और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है. जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे. तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप SIP के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं.
1: All right, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete practical development-oriented outcomes during the BRICS summit, which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry, Sudhakar Dalela, said there are over 50 concrete outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reform. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
3: जी, आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की, और नैसडैक में जो असर हो रहा है. लेकिन अभी

0: कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि नैस्डैक का जो ईटीएफ है उसमें काफी तेजी दिखाई दी है। इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देखकर?
1: जी, तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं, नैस्टैक या S&P 500, नैस्टैक Q50 को जो फॉलो करने वाले ईटीएफ्स हैं, उनके उनके जो स्टॉक उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है, उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था, वो ये NAV से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था। इनके ऊपर वो दायरा था, उसके ऊपर सर्किट लग जाता था। 2 दिन पहले की NAV से ये 20% से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है, उसके रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है, और अब उसको उनके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि NAV से। तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है। तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये ट्रेंड देखा गया है इंटरनेशनल ईटीएफ्स में ही। ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ईटीएफ्स में प्रॉब्लम यह है कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, RBI की लिमिट्स हैं। तो इसलिए जब भी ये देखा गया है कि जब भी कोई चीज प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है, तो उसकी नई यूनिट्स क्रिएट होती हैं, सप्लाई उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है, और दाम अपने आप NAV के नजदीक आ जाता है। इन फंड्स में वो मैकेनिज्म अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है। तो इस कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है। तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है, उस वजह से ये काफी प्रीमियम पे है। अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आप अगर किसी भी विदेशी ईटीएफ में निवेश करने की, इंटरनेशनल ईटीएफ में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कोई फंड अगर 50% प्रीमियम पे है, तो ऐसा हो सकता है कि अगले 2 साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है, तो 2 साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें। तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपये की दाम वाली चीज़ आप 150 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इसमें आपको काफ़ी केयरफुली, अगर आप स्टॉक मार्केट पे ईटीएफ की यूनिट्स खरीद रहे हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
0: जी, यानी ज्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहे।
1: जी,
2: सो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल योर पीस ऑफ एडवाइस वेरी केयरफुली आशुतोष, एंड यू स्पोक अबाउट रिस्क एपेटाइट, यू मेंशन टाइम होराइजन, नॉट रिएक्टिंग टू एवरी मूवमेंट इन द मार्केट। सो इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, आर दीज द की एट्रीब्यूट्स व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री?
1: ओ एब्सोल्युटली। इनफैक्ट देर इज अ वेरी ओल्ड एडेज विच इज सेड दैट टाइम इन द मार्केट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट।
2: वेल सेड।
1: सो a lot of people try to time their entry. They want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined, keep investing periodically, match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
2: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
3: Hello.
0: जी देव, अपना सवाल पूछें।
3: हेलो सर।
0: जी सवाल
3: सर, मेरा मेरी बेटी अभी 18 साल की हुई है, और मुझे उसके लिए कुछ फंड खरीदने हैं, लमसम अमाउंट लगाना है, और अजन 5 से 10 साल का है, और मेरे पास फ्लेक्सी का फंड ऑलरेडी है, एक लार्ज कैप भी है, एक PSU है और ELSS है। ये फंड मेरे पास 2021 से हैं सारे, और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना, तो किस पे मुझे लगाना चाहिए? मेरे पास अलग अलग AMCs के फंड है एक्चुअली।
1: जी, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही देख सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं। अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपिटाइट है।

0: तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं आप उनमें निवेश करते रहें। ईएलएसएस का अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो ईएलएसएस में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है, क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप ईएलएसएस फंड उस केस में बंद कर सकते हैं। और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया, या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है।
1: जी, और नजर डालें FPIs के हाल पर। इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं। जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपए की निकासी की है। कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपए की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई। हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा। इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगले कॉलर है हमारे दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टी कैप काफी फेमस मल्टी कैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब क्या है, मतलब उतना लोग कहते हैं साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब क्या सर, आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए, मेरा सिप में भी यूज मनी जा रहा है उसमें, ना क्या उसको बंद करके उसका साथ में जो दूसरा फंड है जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। थैंक यू
0: जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी, इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं दिखती है कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीजन से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की जरूरत नहीं है। फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है। अगर ये फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना SIP बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं।
1: जी, और देखें, पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। MCX में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 2,34,974 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ।
3: Domestic investors are expected to focus on key market triggers in the holiday shortened week ahead, including the US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and bond yields. Indian stock markets will remain closed tomorrow for Ganesh Chaturthi. Meanwhile, market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures, and employment data. The primary market is also set for another busy week with 5 main board IPOs opening for subscription. Global monetary policy will remain in focus beyond the US with the Bank of England and Bank of Japan.

0: also scheduled to announce their policy decisions during the week.
1: आशुतोष, आज वक्त इतना ही है कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: जी धन्यवाद.
0: Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surge around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிகழ்ச்சிகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒலிக்கவிருப்பது திரைகானம் முதல் பாடல், வீர அபிமன்யு படத்திற்காக பி பி ஸ்ரீனிவாஸ், பி சுசீலா பாடியுள்ள பாடல்.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स ही विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल

0: नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए दिशा स्पष्ट करेगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह।

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और

0: फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। भारत इस महीने की 15 से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी, लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर मंगलवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें उद्योगपति, उद्यमी, नवोन्मेषक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और शिक्षा भी शामिल हैं। ये फोरम ग्लोबल साउथ के साथ साथ सहयोग, निजी निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल मेक्सिको के साल्टिला में रोमांचक शूट ऑफ में जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनने पर गौरव हासिल किया।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.

0: இணையராகும் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை வீணா சகஸ்ரபுத்தே அவர்களின் பாட்டும், வாணிஜராம் வழங்கிய பஜன்ஸும், பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர்கள் வழங்கிய சித்தாரிசையும் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन में आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V.रामासुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। भारत कल से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी लोगो और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said their discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC

आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V.रामासुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की कि भगवान गणेश सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और शांति लाए। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।